0: अग पर अस का
1: मोडकच घर तुटकच छप्पर
0: मग अस ना
1: अवो मोडकच घरन तुटकच छप्पर
0: मग राह की त्यात
1: अव पण राहायला

पूरे विश्व में अकेला ही है। बनारस जैसा दूसरा कोई न शहर है, न यहाँ के लोग जैसे लोग हैं, न यहाँ के श्रद्धा जैसी श्रद्धा है, न यहाँ के मिजाज जैसा मिजाज है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं, सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना। इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्रा जी और कविता कृष्णमूर्ति का।

वर्तत असती सर्वदा तयासी जाहली एक कन्या स्वरूप सुंदर सर्वमान्या केवळ साक्षात श्रीच अन्या।

कुंडली कवर गा हरि विठ्ठल सद्गुरु ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज की जय जय जय रघुवीर समर्थ यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वा

ஆதாரம் ககன சதிருஷம் மேகவரணம் சுபங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகிபிர் தியானகம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வலோகைகநாதம் யம் ப்ரஹ்மா வருணேந்திரருத்ரமருதஸ்து நுவந்தி திவ்யைஸ்தவைர் வேதைஸ் சாங்க பதக்ரமோபநிஷதைர் காயந்தி யம் சாமகாஹ த்யானாவஸ்தித தத்கதேன மனசா பஷ்யந்தி யம் யோகினோ யஸ்யாந்தம் ந விதுஸ்ஸுராஸுரகணா தேவாய தஸ்மை நமஹ. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீவாசுதேவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீவாசுதேவாய, ஓம் நம சிவாய, ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீவாசுதேவாய. ஓம் விஸ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூதபவ்யபவத் பிரபு பூதகிருத் பூதஹிருத் பாவோ பூதாத்மா பூதபாவனஹ பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தானாம் பரமாகதிஹ அவ்யயஃ புருஷ சாட்சி க்ஷேத்ரஜ்ஞோ க்ஷரேவ ச யோகோ யோக விதான்யேத பிரதான புருஷேஸ்வரஹ நாரசிம்ஹ வபுஸ்ரீமான் கேசவ புருஷோத்தமஹ சர்வ சர்வ சிவஸ்தானுர் பூதாதிர நிதிர்வ்யயஹ சம்பவோ பாவனோ பர்தா பிரபவ பிரபுரீஸ்வரஹ ஸ்வயம்போ சம்புராதித்யஃ புஷ்கராக்ஷோ மஹாசனஹ அநாதிநிதனோ தாதா விதாதா தாதுருத்தமஹ அப்ரமேயோ ரிஷிகேஷ பத்மநாபோ மரப்பிரபுஹ விஸ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்தரிஷ்டஸ்தவிரோ த்ருவஹ அகராஹ்ய ஶாஸ்வதஃ கிருஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ ப்ரதர்தனஹ பிரபூதஸ்கிருதகுப்தாம் பவித்ரம் மங்கலம் பரம் ஈஷான ப்ராணத ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட ஸ்ரேஷ்ட ப்ரஜாபதிஹ ஹிரண்யகர்போ பூகர்போ மாதவோ மதுசூதனஹ ஈஸ்வரோ விக்ரமீ தன்வீ மேதாவீ விக்ரமக்ரமஹ அனுத்தமோ துராதரஷ கிருதஜ்ஞ கிருதிராத்மவான் சுரேஷ ஷரணம் ஷரம விஸ்வரேதா ப்ரஜாபவஹ அஹஸ்ஸம் வத்ஸரோ வியால ப்ரத்யய சர்வதர்ஷனஹ அஜஸ்ஸர்வேஸ்வர சித்த சித்தி சர்வாதிரச்சுதஹ விஷாகபிரமேயாத்மா சர்வயோக விநிஸ்ருதஹ வசுர்வசுமனா சத்யசமாத்மா சம்மிதசமஹ அமோஹ குண்டரீகாக்ஷோ வ்ருஷகர்மா வ்ருஷாகிருதிஹ ருத்ரோ பஹுஷிரா பப்ருர் விஸ்வயோ நிஷ்யுசிஸ்ரவாஹ அமிருத ஷாஸ்வத ஸ்தானுர்வராரோஹோ மஹாதபாஹ சர்வக சர்வ விதுபானுர் விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்தனஹ வேதோ வேதவித வ்யங்கோ வேதாங்கோ வேதவித் கவிஹ லோகாத்யக்ஷ சுராத்யக்ஷோ தர்மாத்யக்ஷ க்ருதாக்ருதஹ சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹ்சதுர்தம்ஷ்ட்ருபுஜஹ பிராஜிஷ்ணுர் போஜனம் போக்தா சஹிஷ்ணுர் ஜகதாரியஹ அனுகோ விஜயோ ஜேதா விஸ்வயோனிஃ புனர்வசுஹ உபேந்திரோ வாமன பிராம்சுரமோக சுச்சுருர்ஜிதஹ அதீந்திர சங்கிரஹ சர்கோ த்ருதாத்மா நியமோ யமஹ வேத்யோ வைத்யஸ் சதா யோகீ வீரஹ மாதவோ மதுஹ அதீந்திரியோ மகாமாயோ மகோத்சாஹோ மகாபலஹ மகாபுத்திர் மகாவீரியோ மகாசக்திர் மகாத்யுதிஹ அநிர்தேஷ்ய வபுஸ்ரீமான் மே ஆத்மா மகாத்ரிதிக் மகேஷ்வாசோ மஹீபர்த்தா ஸ்ரீநிவாஸ சதாங்கதிஹ அனிருத்த சுரானந்தோ கோவிந்தோ கோவிதாம்பதிஹ மரீசிர்த மனோஹம்ச சுபர்ணோ புஜவோத்தமஹ ஹிரண்யநாப சுதபாஹ பத்மநாப ப்ரஜாபதிஹ அமிருத்யுஸ் சர்வத்ரிக்சிம்ஹ சந்தாதா சந்திமான் ஸ்திரஹ அஜோ துர்மர்ஷண ஷாஸ்தா விஸ்ருதாத்மா சுராரியஹ குருரு குரு தமோ தாம சத்ய சத்ய பராக்ரமஹ நிமிஷோ நிமிஷஸ்ரகிரி வாசஸ்பதி ருதாரதேஹ அக்ரணிர் கிராமணி ஸ்ரீமான் நியாயோ நீதா சமீரணஹ சஹஸ்ரமூர்தா விஸ்வாத்மா சஹஸ்ராக்ஷ சஹஸ்ரபாத் ஆவர்த்தனோ நிவிருத்தாத்மா சம்வ்ருத சம்ப்ரமர்தனஹ அஹஸ்ஸம் வர்த்தகோ வன்னிர நிலோ தரணீதரஹ சுப்ரசாத பிரசன்னாத்மா விஸ்வத்ருக் விஸ்வபுக்விபுஹ சத்கர்த்தா சத்கிருத சாதுர் ஜன்னுரு நாராயணோ நரஹ அசஞ்சேயோ ப்ரமேயாத்மா விசிஷ்ட சிஷ்டகுச்சுசிஹ சித்தார்த்த சித்த சங்கல்ப சித்திதஸ் சித்தி சாதனஹ வ்ருஷாஹி வ்ருஷபோ விஷ்ணுர் வ்ருஷபர்வா வ்ருஷோதரஹ வர்தனோ வர்தமானஶ்ச விவிக்த ஸ்ருதி சாகரஹ சுபுஜோ துர்தரோ வாங்மீ மஹேந்திரோ வசுதோ வசுஹ நைக ரூபோ ப்ருஹத்ரூபஶ்சிபிவிஷ்ட ப்ரகாஶனஹ ஓஜஸ்தேஜோ த்யுதிதர ப்ரகாஷாத்மா ப்ரதாபனஹ ருத்தஸ்பஷ்டாட்சரோ மந்திரஶ்சந்திராம்சுருபாஸ்கரத்யுதிஹ அமிருதாம்சூத்பவோ பானுஷ்யஷபிந்து சுரேஸ்வரஹ ஔஷதஞ்சகதஸ்யேது சத்யதர்ம பராக்ரமஹ
भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युवादिकृद्युवावरतो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टश्चिष्टेष्टश्च खण्डेनौषोऽंशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपाम् निधिरधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरशौरीर्जनीश्वरः अनुकूलशतावरतः पद्मी पद्मनिहेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलशरभो भीमः समयज्ञो हरिर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुरुदामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः करणम् कारणम् कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः पररथिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टशुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमताम् श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषप्राणप्राणवप्रणवप्रथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रसंवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थानुः प्रमाणम् बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामुखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञैज्यो महेज्यश्च क्रतुःसप्रंसताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरोजितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्वर्षो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः व्यभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवहृद्गुरुः उत्तरो गोपतिरगुप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतहृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महर्ह स्वाभाव्योजिता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृदान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गरी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढस्सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्डपरशुरदारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामासामगस्साम निरवाणम् भेषजम् भिषक् सन्न्यासकृच्छमशान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गश्चाञ्चिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपचरगोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा सङ्क्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षः श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमाल्लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गशतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीश शाश्वतस्थिरः
ಭೂಷಯೋ ಭೂಷಣೋ ಭೂತಿರ್ವಿಶೋಕ ಶೋಕನಾಶನ ಅರಚುಷ್ಮಾನರಚಿತ ಕುಂಭೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ವಿಶೋಧನ ಅನಿರುದ್ಧೋ ಪ್ರತಿರಥ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಕಾಲನೇಮಿನ್ಯಃ ವೀರ ಶೌರೀಶೂರಜನೇಶ್ವರ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಶಿಹ ಹರಿ ಕಾಮದೇವಃ ಕಾಮಪಾಲಃ ಕಾಮೀಕಾಂತಃ ಕೃತಾಗಮಃ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುರ ವಿಷ್ಣುರ್ವೀರೋ ನಂತೋ ಧನಂಜಯಃ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯಃ ಮಹಾಕ್ರಮೋ ಮಹಾಕರ್ಮ ಮಹಾತೇಜ ಮಹೋರಗಃ ಮಹಾಕೃತುರು ಮಹಾಯಜವಾ ಮಹಾಯಜ್ಞೋ ಮಹಾಹವಿಃ ಸ್ತವ್ಯಸ್ತವ ಪ್ರಿಯಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಸ್ತೋತಾರಣ ಪ್ರಿಯಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪೂರಯಿತಾ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ಮನೋಜವಸ್ತೀರ್ಥಕರೋ ವಸುರೇತಾ ವಸುಪ್ರದಃ ವಸುಪ್ರದೋ ವಾಸುದೇವೋ ವಸುರು ವಸುಮನಾಹವಿಃ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸತ್ತಾ ಸದ್ಭೂತಿಃ ಸತ್ಪರಾಯಣಃ ಶೂರಸೇನೋ ಯದುಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸನ್ನಿವಾಸಸ್ವಾಮುನಃ ಭೂತಾವಾಸೋ ವಾಸುದೇವಃ ಸರ್ವಾಸು ನಿಲಯೋ ನಲಃ ದರ್ಪಃ ದರ್ಪದೋ ದೃಪ್ತೋ ದುರ್ಧರೋಥಾ ಪರಾಜಿತಃ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ಮಹಾಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಅನೇಕಮೂರ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಶತಮೂರ್ತಿಶತಾನನಃ ಏಕೋನೈಕಃ ಸವಃ ಕಃ ಕಿಂ ಯತ್ತತ್ಪದಮನುತ್ತಮಂ ಲೋಕಬಂಧುರಲೋಕನಾಥೋ ಮಾಧವೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣೋ ಹೇಮಾಂಗೋ ವರಾಂಗಶ್ಚಂದನಾಂಗದೀ ವೀರಃ ವಿಷಮಶೂನ್ಯೋ ಘೃತಾಶೀರಚರಶ್ಚಲಃ ಅಮಾನೀಮಾನದೋ ಮಾನ್ಯೋ ಲೋಕಸ್ವಾಮೀ ತ್ರಿಲೋಕಧೃಕ್ ಸುಮೇಧಾಮೇಧಯೋ ಧನ್ಯಃ ಸತ್ಯಮೇಧಾಧರಾಧರಃ ತೇಜೋ ವೃಷೋ ದ್ಯುತಿಧರಃ ಸರ್ವಶಸ್ತ್ರಭೃತಾಂವರಃ ಪ್ರಗ್ರಹೋ ನಿಗ್ರಹೋ ವ್ಯಗ್ರೋ ನೈಕಶೃಂಗೋ ಗದಾಗ್ರಜಃ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಶ್ಚತುರ್ಗತಿಃ ಚತುರಾತ್ಮ ಚತುರ್ಭಾವಶ್ಚತುರ್ವೇದವಿದೇಕವತ್ ಸಮಾವರ್ತೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮ ದುರ್ಜಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದುರ್ಗೋ ದುರಾವಾಸೋ ದುರಾರಿಹ ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗ ಸುತಂತು ಸ್ತಂತು ವರ್ಧನಃ ಇಂದ್ರಕರ್ಮ ಮಹಾಕರ್ಮ ಕೃತಕರ್ಮ ಕೃತಾಗಮಃ ಉದ್ಭವ ಸುಂದರ ಸುಂದೋ ರತ್ಮನಾಭ ಸುಲೋಚನಃ ಅರ್ಕೋ ವಾಜಸನ ಶೃಂಗೇ ಜಯಂತಃ ಸರ್ವ ವಿಜ್ಜೈ ಸುವರ್ಣಬಿಂದುರಕ್ಷೋಭ್ಯ ಸರ್ವವಾಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ಮಹಾಹೃದೋ ಮಹಾಗರ್ತೋ ಮಹಾಭೂತೋ ಮಹಾನಿಧಿಃ ಕುಮುದಃ ಕುಂದರಃ ಕುಂದಃ ಪರಜನ್ಯಃ ಪಾವನೋನಿಲಃ ಅಮೃತಾಂಶೋ ಮೃತವಪುಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ಸುಲಭಸ್ಫೂರ್ತಃ ಸಿದ್ಧಶತ್ರುಜಿಚ್ಛತ್ರುತಾಪನಃ ನ್ಯಗ್ರೋಧೋದುಂಬರೋಶ್ವತ್ಥಶ್ಚಾಣೂರಾಂಧ್ರನಿಷೂದನಃ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚಿಃ ಸಪ್ತಜಿಂಹಃ ಸಪ್ತಯಿಧಾಃ ಸಪ್ತವಾಹನಃ ಅಮೂರ್ತಿರನಘೋಚಿಂತ್ಯೋ ಭಯಕೃದ್ಭಯನಾಶನಃ ಅಣುರುಬೃಹತ್ಕೃಶಸ್ಥೂರೋ ಗುಣಭೃನ್ನಿರ್ಗುಣೋ ಮಹಾನ್ ಅಧೃತಸ್ವಧೃತಸ್ವಾಸ್ಯ ಪ್ರಾಗ್ವಂಶೋ ವಂಶವರ್ಧನಃ ಭಾರಭೃತ್ಕಸಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ಆಶ್ರಮಶ್ರವಣಕ್ಷಾಮ ಸುಪರ್ಣೋ ವಾಯುವಾಹನಃ ಧನುರ್ಧರೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ದಂಡೋದಮಯಿತಾದಮಃ ಅಪರಾಜಿತಃ ಸರ್ವಸಹೋ ನಿಯಂತಾ ನಿಯಮೂಯಮಃ ಸತ್ವವಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಿಯಾರ್ಹೋರ್ಹ ಪ್ರಿಯಕೃತ್ಪ್ರೀತಿವರ್ಧನಃ ವಿಹಾಯ ಸಗತಿರ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಸುರುಚಿರ್ಹುತಭುಗ್ಭಿಃ ರವಿರ್ವಿರೋಚನಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸವಿತಾ ರವಿಲೋಚನಃ ಅನಂತೋ ಹುತಭುಗ್ಭೋಕ್ತಾ ಸುಖದೋ ನೈಕಜೋಗ್ರಜ ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಸದಾಮರಶೀ ಲೋಕಾಧಿಷ್ಠಾನಮದ್ಭುತಃ ಸನಾತ್ ಸನಾತನ ತಮಃ ಕಪಿಲಃ ಕಪಿರವ್ಯಯಃ ಸ್ವಸ್ತಿದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕೃತ್ಸ್ವಸ್ತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭುಕ್ ಸ್ವಸ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣಃ ಅರೌದ್ರಃ ಕುಂಡಲೀ ಚಕ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ಯುರ್ಜಿತಶಾಸನಃ ಶಬ್ದಾತಿಗಶಬ್ದಸಃ ಶಿಶಿರಃ ಶರ್ವರೀಕರಃ ಅಕ್ರೂರಃ ಪೇಷರೋ ದಕ್ಷೋ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷಮಿಣಾಂಗರಃ ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವೀತಭಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ಉತ್ತಾರಣೋ ದುಷ್ಕೃತಿಃ ಪುಣ್ಯೋ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನಃ ವೀರಃ ರಕ್ಷಣಃ ಸಂತೋ ಜೀವನಃ ಪರ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಅನಂತರೂಪೋನಂತಶ್ರೀರ್ಜಿತಮನ್ಯುರುಭಯಾಪಃ ಚತುರಸ್ರೋ ಗಭೀರಾತ್ಮ ವಿದಿಶೋ ವ್ಯಾದಿಶೋ ದಿಶಃ ಅನಾದಿರ್ಭೂರ್ಭುವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸುವೀರೋ ರುಚಿರಾಂಗದಃ ಜನನೋ ಜನಜನ್ಮಾದಿರಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ಆಧಾರನಿಲಯೋಧಾತ ಪುಷ್ಪಃ ಸಪ್ರಜಾಗರಃ ಊರ್ಧ್ವಗಃ ಸತ್ಪಥಾಚಾರಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಣವಃ ಪಣಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಜೀವನಃ ತತ್ವಂ ತತ್ವವಿದೇಕಾತ್ಮ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಃ
भूर्भुवस्वस्तरुस्तारस्य पिता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यजमा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्य मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधनवागदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः इति हरये नमः हरये नमः हरये।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना। संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्रा जी और कविता कृष्णमूर्ति का।